हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दे तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कढ़े हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नामदेव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शे गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूहानी रूह की खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला ले। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर, हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता करांदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे न उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे।

कबीर साहब कह रहे ने मैं ता गुलाम हां मैं ता ओदे घर दा नौकर हां ए हुण ओदी मर्जी है

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना है, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं किया।

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुगो अटल,

छुपाई। हाली वापस नहीं पहुंची, कबीर साहब पहला ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई, सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती, बादशाह नूं पता लगा है। हाली कबीर मरिया नहीं, फिर सिपाही भेजे ने, सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है, जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए ने। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने, पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे हुए अपनी श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

0: काजी नू हाले भी समझ नहीं आई। ओ हाथी इना लोका नू एक सवाल करदा है,
1: क्या अपराध संत है कि ना।
0: हाथी कहंदा है इस कबीर दा अपराध की है, इना ही कि ए परमेश्वर दा नाम जपदा है, जेड़ा परमेश्वर दा नाम जपदा है उनू

कंदरलो दी दुनिया दा बादशाह अज नंगे पैर कबीर साहब दे आके चरना ते मथा टेके ते उपदेश मंगे। कबीर साहब कहन लगे भाई अकाल पुरख ने बादशाही दिती ते ओदे बंदिया नू तंग ना कर, तू भी ओदा सिमरन कर, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। इस तरह जेड़े भी राम दी ओट लेंदे ने राम उन्हां दी रख

तू हाथी के सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया। तू भावे समझदार है, मैं बहुत खुश।

एक सहज तारी प्रेम रह राज का पाठ पिया कर लड़का बाहरू भटकदा आया पिता नू पाठ करदा तकिया ते कोल बैठ गया। पिता ने पाठ कीता सुनिया

पिता ने दिता गया बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब विच पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगतां उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर मिल हूं मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा हो गया क्योंकि उसकी बाणी में बड़ा आनंद है वो गुरु से समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावांगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुओं की संगत करता सी जो देखता सी उसी तरह गुरु साहबां बारे

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही तो साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रसा है। हुण जिहड़े दे रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहज धारी नूं पुछदे ने, ओ सिखा तू नहीं बोलदा तेनू कैसा रस आया। हुण इह कहिंदा जे मैं आखां सुभा दा रस है, पहला मैं कदे कीर्तन सुनिया। जे मैं आखां जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, ज्यो ज्यो कीर्तन सुने मन भटकिया नहीं, मन मन दे विच ही टिक गया। आखो सतनाम श्री गुरु। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है। आखो सतनाम श्री गुरु। बाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहन लगे सिखा निहाल। एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबां नूं भेट करके मत्था टेकिया। ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों। एक सरबलोह का कड़ा दिता जिहड़ा कड़ा असी हाथ विच बने। नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अदब रखी

खुशी खुशी आनंदपुर साहब को तुरे, पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब तो बाहर आया तो सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिरती फिर जाग गई। जिमें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता, जो गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, और गल याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब को निकले है तो सारा आनंद गवाच गया। कह लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जेड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैनू 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम श्री गुरु उदास हो गया, गुरु की निंदा करता हो।

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नु भेटा किया, गुरु ने मैनू की दिता है एकड़ा प्रसाद जेड़ा मेरा पिता घर रोज बनाता है, एकड़ा दिता है लोहे का नाले वचन दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, पर ध्यान सिंह तू दस इस कड़ी ने मैनू

के एक मूर्ख आया, वो की जाने गुरु का वचन की होता है। जे तू मेरे नाल सहमत हो में गुरु का वचन ते कड़ा उदे गुरु असी ले ली। साध संगत कई परिवार बड़े भागा वाले होते, ध्यान सिंह माजरिए देखो, ओ मन में कितना प्यार है, अगो

उन्हें बड़ा खुश। पिता ने पूछा, सुना फिर बेटा, गुरु दे दर तू की लैके आए? जद के यार गुरु तू की लैके आए हैं? ते मोरा दियां थैलियां अगे कर दी। जद इन्हें यह किया, मैं गुरु का वचन ते कड़ा बेच के आया। ते पिता ताई मार के रूपे, क्योंकि गुरु नाल प्यार करता सी। मां नूं पता लगा, मां का भी जिवें

ते पाणी दाव गड़वा बिस्तरे डोर देता। बिस्तरा गिला हो गया, कपड़े गिले हो गए, हरी सिंह की जान खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिले। एक सर्दी उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा। पासी मारदा है बिस्तरा गिला, नींदर नहीं आती पर सास संगत मां ते फिर मां ही मां। पासा मार के लपी पई, अखा बंद पर जागदी। अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र नो नींदर नहीं आ रही। दिन चढ़े, हरी सिंह उठे।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समां केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समां उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असि तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्नताई है तां ध्यान दियो ते ओह पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असि तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग सुखिए।

परम सम्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैणा वालों आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहिंदे ने कि प्रगटो, जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज वज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने दे मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हां दा संबंध जिहड़ा है विसाखी दे नाल है। छेवें पातशाह ने यह ढाडी पैदा कीते ते सिख इतिहास नूं संभालण लई, सूरमियां ते योधियां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा इकट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लै के दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे इकट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, और कृपान जो गुरु के सिख लैके खड़े ने, और मंग की कि एक सिर की लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लिया ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर की लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या एक गभरू उठे, जेदी 30 साल की उम्र है, जेदा ना है भाई दया राम, और जेदे माता का ना शोभा देई और पिता का नाम मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह दे चरणा विच आके कहन लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर शशो पंज सी कि एक वेर चीज अर्पण कीती दोबारा भी अर्पण कीती जा सकती है। कहन लगा, जदों 13 साल दी उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम दे नाल तुहाडे दर ते आया सां, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे चरणा विच सिर ते उदों दे दिता। कलगी वाले पातशाह ने कृपान अगे कीती कि गबरुआ आ कृपान फड़ के लड़ सकदे? कहन लगा, काम हमारा तोले तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगी वाले पातशाह अंदर ले गए ने और सहमे हुए सिर देख रहे ने। उदू बाद दूजी वेर आए ते दूजी वेर सरदार धर्मचंद जी उठे, पिता का नाम, माता का नाम अनंती, पिता का नाम परम सुख, और जदों उठिया इनू भी लै गए खून दे नाल लथपथ कृपान। आ वेख